कि मैं बड़ा ऊंचा, मैं तो हमेशा ये भी कहना कि मैं बहुत नीवा हूं। मेरा बहन उठना भी नीवियां दे नाल पर एक गल

एक हरी हरी ए ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनु एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है क्योंकि जिस दा विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया जिस दा हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिस दा हर स्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी आन अवर सिंजान ना करी ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

साहिब फरमान करते हैं कि सारा कुछ परमेश्वर की कृपा नाल गुरु तो ही प्राप्त होता है।

ताप जो तप है, व्रत है नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उना दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

परम सत्कार योग साध संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागियों दूरों दूरों चल के करो गीत अंध्या संकोच के शरदा प्रेम भावना लेके जागत जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में पुजे आके गुरमुख प्यारियां तो गुरबाणी का कीर्तन गुर इतिहास सरवण कीता। जिन्ना समा होर महाराज बख्शदे ने अज इस पंडाल का पंजवां समाप्ति का दीवान है। सारियां संगतां गज बज के बोल के शरदा भावना नाल जेड़ी संगत बाद विच आ रही है शांति दे नाल गुरु महाराज दा अदब मुख रख के जिथे जिथे जगह मिलदी है सतगुरां नूं हाजर नाजर समझ के बैठना ते लाहा प्राप्त करना। बहुत वड्डी कृपा होवे उदों सतगुरु पातशाह जी कृपा करदे ने नगरां नूं गुरमुख प्यारियां नूं घर विच सेवा ते सिमरन दी दात बख्शदे ने। बाकी दातां जरूरी हन जीवन दा निर्वाह माया गुजरान है बहुत जरूरी ने पर मनुष्य दी समझ ज्ञान इस तल ते रुक गया कि अपनी जरूरत नू मंजिल समझ बैठे। एक मंजिल होंदी है एक लोड़ होंदी है जरूरत। जरूरत तो बिना मंजिल ते पुजिया नहीं जा सकता पर जे मंजिल ना आई ते लोड़ां व्यर्थ गईयां। जरूरत ते मंजिल इनू जटकी भाषा विच समझ लो जो कणक बीजी गई है रे बूटे दी जरूरत है पानी बूटे दी जरूरत है गुडाई करनी बूटे दी जरूरत है। ते गुरमुख प्यारियो मंजिल की है झाड़ निकले दाने पैदा हुए। हुण दोवां दा संबंध किन्ना है ते गुरमुख प्यारियो सेवा तो बिना खर्च तो बिना बूटे दी जरूरत तो बिना झाड़ नहीं निकलना। पर जे झाड़ ना निकलिया वो रे पानी व्यर्थ गया खुश। झाड़ की है वो भी तुहाडे सामने दी क्रिया है। गुरबाणी ने तो फैसला किया है आ जिहड़ी बाणी पढ़नी है ना नितनेम करना ये क्यों शुरू किया कीर्तन क्यों शुरू किया कथा क्यों शुरू की लो जे तुसी सच गल समझो इन्हां दी लोड़ नहीं सी। ये मजबूरी है मनुख दी समझ लो गुरमत विचों एक सानू अख दती है एक गुरमुख प्यारे वो कन दता है फिर मत दती है समझण वास्ते। जेड़ा आदमी देख के समझ जावे उन्हूं बोलने की लोड़ नहीं हुंदी। जेड़े बंदे नूं देख के समझ आ जावे आ चीज आ है उन्हूं बोल के दसण की लोड़ नहीं। जिन्हूं दिखे ना उहदे वास्ते बोलना ही साधन है। अंधा बंदा उन्हूं कहना पऊगा तेरे मूहरे चिक्कड़ है भी पासे हो जा उत्थे बोलने की लोड़ पई।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀ। ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਮੂਹਰੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਗਿੱਲਾ ਮੂਹਰੇ ਕੰਡੇ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੀ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਗ ਵਰਤੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ

सत्संगी सज्जन पवित्र आत्मा गुरमुख सज्जन जितने भी माई भाई साहेब गुरु ग्रंथ साहब पातशाही के पवित्र कदमा अंदर अमृत वेले दिया हाजरियां भर रहे हो सोने दरबार प्यारे दरबार सतगुरु जी के पवित्र चरणों का आनंद ले रहे हो। बहुत बख्शिश होवे बहुत गुरु कृपा करे तो अपनी सिर्फ सलाघा बख्शदा है सिर्फ सलाघा उन्होंने बख्शदा है जिन्हों ते गुरु का कर्म हो जिन्हों ते गुरु की बख्शिश मेर अति रहमत होवे उन्होंने सत्संग दियां कड़ियां नसीब होंदियां हन। कैसा आनंद है शब्द विच कैसा रस है शब्द विच पंक्तियां जो पढ़ रहे सां जपो ता एको नामा एक नाम नाली जोड़िया है एको नाम नाली सानू जोड़िया होर किसे नाल नहीं जोड़िया। एको जप एको साला एक सिमर एलो मनया एक के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवान दूजा काहे सिमरिए जो जमे ते मर जाए एको सिमरो नानका जो जल थल रहा। पर सिमरना ही बड़ा मुश्किल बड़ा कठिन है कुल दुनिया के धंधे सौखे है एक प्रभु का सिमरन सब तो औखा है बड़ा कठिन है। कोई समय ली एकाग्रता बख्श नहीं जितने मेरे सज्जन बैठे हो मिनट गिणवे रह गए 94 मिनट रह गए हैं वो मिनटा नु असा सफल करना है। सब तो पहला मन चित बिरतियां नु टिकाव विच लियाओ एक बार प्यार नाल आखो सदना आ वेख लिया जी हुणे किन्ना बिखड़ा है किन्ना मुश्किल है नहीं आख्या जांदा सारे कोल आख्या ही नहीं गया सारे आपो अपने ध्यान विच है ये कठिन है। कुल दुनिया के धंधे सौखे ने एक वाहेगुरु आखना मुश्किल है एक वाहेगुरु आखना कठिन है ये मैं नहीं कह रहा ये गुरु बाबा कह रहे रोज नहीं पढ़ते आखण औखा साचा ना बड़ा औखा है ये नहीं आख्या जाता आखो ना साधना देखिया जी नहीं एवं तो नहीं बाबा जी बाणी कहते आ बचन सुनियो बुरे काम को ऊट खलोया बैठा कर्म करना हो ना अधी रात दौड़ पैदा नींद की परवाह नहीं सुस्ती की परवाह नहीं बरादरी की परवाह नहीं मां प्यो की परवाह नहीं रिश्तेदारां दी परवाह नहीं करदा। बाबा जी कहंदे बुरे काम को ऊट खलोया ते अगली पंक्ति पढ़ी जे कदी नाम की वेला पह पह सोया वाहिगुरु आखण वेले नूं नींदर आ जांदी वाहिगुरु आखण वेले नूं उंगलां आ जांदी इहनूं सुस्ती पै जांदी इहदे कोलों नहीं आख्या जांदा इह कठिन सौदा जे इह बिखड़ा सौदा जे नाले सुस्त आदमी ते आख नहीं सकदा। सानू ते कलयुग पिया होया सानू ते कलयुग ने दबाया होया कुचलिया होया पैरां थले लताड़िया होया कलयुगी बंदा ते वाहिगुरु नहीं कह सकदा ये ओही कह सकदा है जिसे ते गुरु नानक जी कृपा होएगी। एक बारी आखो तुलसी जी का बचन एक पढ़िया बाबा जी ने कमाल कर दिती है तुलसी जी का बचन मैं कह रहा तुहानू आखण औखा साचा नाम क्यों औखा है। तुलसी जी ने शलोक उचारे जदों मैं पढ़ना जदों मैं संतान सुनाना मैनू भी आनंद आंदा मैनू भी स्वाद आंदा की कहंदे तुलसी नाम जो राम को जिन्होंने रामायण लिखी है जिन्होंने राम का जीवन पेश किया बयान किया है खोलिया है खुलासा किया है कहंदे तुलसी नाम जो राम को राम का नाम भगवान का नाम ईश्वर का नाम खुदा का नाम अल्लाह का नाम गाड का नाम परमेश्वर का नाम मेरे वाहिगुरु का नाम नाम सारे ही उदे असा त्रेड़ा पाईया असा विथा पाईया असा दुआरा खड़िया कीतिया हुई नाम सारे उदे नाम च कोई फर्क नहीं साडे जपन च फर्क है। बड़ी प्यार की गल कह रहा तुलसी नाम जो राम को रीज लियो चाहे खीज भावे रीत किल लै ते भावे खीज किल लै रीत का मतलब की होया प्यार नाल आखना श्रद्धा नाल भावना नाल सत्कार नाल भाव नाल भक्ति नाल ते खीज का की मतलब होया थोड़ी जी कागरता खीज का मतलब पंजाबी का लफ्ज़ सड़के आखना कुड़के आखना गुस्से नाल आखना यो मानो के मजबूरी
ਨਾਲ ਆਖਣਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਮਜਬੂਰਨ ਉੱਠਦਾ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਇਨਸਾਨ ਐ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਨਾਮ ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਰੀਜ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਖੀਰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਔਖੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਲਸੀ ਨਾਮ ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਰੀਜ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਖੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਪਰੈ ਸੋ ਉਗਤ ਹੈ ਉਲਟੋ ਸੀਧੋ ਬੀਜ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਛੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਕੂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖੋਏ ਆਖ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਸਾਧਾ, ਐਵੇਂ ਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਆਖੋ ਨਾ ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ।

जेठ दा महीना तत्ता तुप तत्ती रेत तत्ती मुगल सरकार तत्ती पर ठंडे कौन हन शांति दे पुंज निमरता दे सागर गंभीरता दे सोमे गुरबाणी दे बोहित गुरमत दे स्कॉलर पंजवे गुरु नानक शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। किसे कवि ने ठीक ही किया है, इना अखा ने कई पतंगिया नू उंज ता लाटा ते सड़दिया देखिया है, मैं कई वेर चुप किते गुंचिया नू देगा विच भी कढ़दिया देखिया है, तत्ती रेत ते कई नमाजिया नू मैं कलमा यार दा पढ़दिया देखिया है, पर मैं की दसा अर्जन देव ताई किदा अग उते सड़दिया देखिया है। हजरत मियां मीर ईरान दे रहन वाला जो उस वक्त लाहौर विच ही रह रहा सी, जदों उस नू किसे ने जाके दसिया ओए फकरा जाके अपने यार दी हालत ता देख, ता इस सुन के साई मियां मीर दौड़िया आया, आके की देखदा है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठे हुए हन, सारा शरीर छले छले होया पया है, पर मस्तक डलका मारिया है ते मुखों की कह रहे हन, तेरा किया मीठा लागे। ए सब कुछ देख के साईं मियां मीर ने गुरु साहिब नू सवाल कीता। मियां मीर ने पुछिया सतगुरां नू, तवी तपदी वांग तंदूर दाता और तन भर दिता सारा शालिया ने जिवें वेल ते गुच्छे अंगूर दाता, कोमल कलियां तो कूड़ा रेशमा तो जिसम टलके होया मनूर दाता, और कल तख्त उत्ते ते तवी उत्ते एक ही खेल रचाए रब्बी नूर दाता, ते नाल ही हाथ जोड़ के बेनती कीती, महाराज मेरे कोलों तसीहे जरे नहीं जांदे, मेनू हुक्म दियो मैं आज ही लाहौर ते दिल्ली दी इट नाल इट खड़का देंगा। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ी धीरता नाल पुछया, साईं जी ए शक्तियां कित्थों प्राप्त कीतियां? तां जवाब मिलिया, जी हजूर कोलों। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, इन्हां शक्तियां नूं असीं वी तां वरत सकदे सी, पर शक्ति वरतना परमात्मा दे विरुद्ध बगावत करना है। साडे दो निशाने सन, असी इस सृष्टि उपर दो नीहां रखनियां सन। अगों हस के सतगुरु कहन लगे, तू फकरा रमज पछाणी नहीं, मैं तेरे दिल दी जान लई, तू मेरे दिल दी जानी नहीं, मैं रखनियां है सन दो।

जो बला वह तुम बोलह स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन वस्त एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहार कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सकै मेहमान जो तिहारी हम न सकत कर सिवत तुम्हारी। हम न सकत कर सिवत तुम्हारी आपले हो तुम कथा सुधारी। जस करो वाहिगुरु दा प्यारे चितनु एकागर।

जैसो गुरु उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार। कह नानक सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार। कल युग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तार हर दरगह पत सिंह जाइंदा।

0: सतगुरु जुग जुग अटल चवर तख्त मालक दसम पातशाह जग दी जोत शब्द अवतार संसार दे सांझे रहबर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र गोद विच दूरों नेड़ों चल के जिन्हें भी माई पाई सत्संगत हरी जस कीर्तन का लाभ उठाने के लिए गुरु दरबार हो बड़भागे हो आओ अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करो अपनी सुरती अखा बाहर जाने तो रोको इधर उधर वेखन की कोशिश ना करो गुरु स्वरूप का ध्यान करो क्योंकि हरी जस कीर्तन सत्संग का पूरा लाभ ता ही प्राप्त हो सकता है जे साडे तन दे नाल मन भी इत्थे हाजिर होवे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु
0: क्योंकि यह सब सुनाउणा मन नूं है तन नूं नहीं है तन तां इक जरिया है सो गुरु जी कहिंदे ने प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत जदों मन एकाग्र हो जाएगा गुरु शब्द दे नाल जुड़ेगा हरी जस कीर्तन च जुड़ेगा भुख दुख गर्मी सर्दी सब लगन तो हट जांदियां हन क्योंकि सेवक उही हुंदा है सत्संगी उही हुंदा है जिहड़ा भुख प्यास ते कंट्रोल करे गर्मी सर्दी सहार सकदा होवे दुख सुख की परवाह ना करे मान अपमान तो उपर उठे अते अपने मन नूं अपने काबू विच रखे कंट्रोल करे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु
0: सो यह साडे चंगे भागां दी निशानी है कलयुग दा बड़ा भयानक समा है ऐसे समय दे विच गुरु की शरण मिल जाणी सतसंगत मिल जाणी अतशा करके निश्चय करके यह साडे चंगे भागां दी निशानी है सो कदम सफल किए ने गुरु वाल चल के नेत्र सफल किए ने दर्शन करके सीस सफल किया नमस्कार करके मत्था टेक के अपनी जबान भी सफल कराया करो गज बज के तेना हिस्सों के बोल के

जिज्ञासु कौन है, सत्संगी कौन है, जिहड़ा सवाल करता है जाके, हे गुरु हे महापुरशो मैनू दसो, मैं चौरासी विच फसया होया हां, मैं हनेरे विच फसया होया हां, मेरी जिंद दुखां विच फसी हुई है, मैनू दसो कोई रास्ता। ये सवाल करता है।

देवजी महाराज हुण इह तां गुरु नानक दी मेहर है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु नानक दा रूप बन गए पर पृथ्वी चंद जिन्हां दा सुभाव माया वाला ईरखा वाला दुबदा वाला सी और महादेव उन्हां नूं किसी चीज दे नाल कोई मतलब नहीं सी। वड्डा भरा पृथ्वी चंद हर वेले गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल ईरखा करया करदा सी। एक दिन दा जिक्र है, गुरु अर्जन देव जी महाराज दे तर्मस पत्नी माता गंगा जी जिन्हां ने वेड़े दे विच कीमती कपड़े कीमती समान रखे है धुप लवाउण वास्ते कपड़िया नूं पृथ्वी चंद जी दी घरवाली करम कौर उसने जद छत ते चढ़ के माता गंगा जी दे घर वल देखिया रेशमी कपड़े गहने कीमती समान ते सड़ पल के कोले हो गई। करम कौर ये सारा कुछ देख के बर्दाश्त ना कर सकी, मंजी ते आके लम्मे पै गई। पृथ्वी चंद बाहरों आए घरवाले नूं कहन लगे, करम कौरे उदास क्यों है? करम कौर कहन लगी पृथ्वी चंद नूं, अगर तुसी अपने पिता दा कहना मन्या हुंदा गुरु रामदास जी दा ते तुसी गुरु बन

आप कराएं। ते हुन तुसी दावा करके कह सकते हो जदों घरां नूं जाओगे ए दावा करके कह सकते हो कि किसी ने बैकुंठ नहीं वेखे।

माता गंगा जी अपने महलों में चले गए ते श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ओही पुराना कंबल अपने पावन शरीर ते ओढ़िया होया है ते जोड़िया विच आके खलो गए। हजूर कहंदे गुरसिखो जाओ तुसी गुरु रामदास साहब दा दर्शन करो ते तुहाडे जोड़िया दी राखी मैं करां।

सत्संग तुम्हें कह दे थोड़ी देर होर रुक जा। मैनू इस रस तो ना तोड़न, गुरु नानक दा जोड़ा लभ जाए ते मैं अपने आप ही हरिमंदर साहब पहुंच जावां। इतनी निमत्ता जे इतनी निम्रता सी ते तवियां ते बह के भी क्रोध नहीं आया, जे इतनी निम्रता सी ताइयों ते पट्टा ने कह दिता कि धरण गगन नव खंड में जोत स्वरूपी रहो भर, भन मथुरा कछ भेद नहीं बुर अर्जन।

एक पासे दास दूजे पासे वीर ते तीसरे पासे भैरां इस शब्द नूं दो चार दफा होर कह लो। पहला दास बोलणगे फिर वीर बोलण ते फिर भैरां बोलण।

एक निर्मल पंथ चलाया। इस पंथ विच जात पात ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं, और जिहड़ा जात पात सिख मनदा है, सिख बेशक वह खवांदा है, पर गुरु दे उपदेश तो वह दूर है, क्योंकि गुरु साहबा ने कहा है कि परमेश्वर ने जातां पातां ऊंच नीच नहीं बनाई, इस सब कुछ इंसान दा बनाया होया है। इस करके जेड़ा मैनू प्यार करदा है वो जातां पातां ऊंच नीच नहीं मनदा। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक ये दस गुरु साहबान गुरुगद्दी ते बैठे, पर गुरुगद्दी ते ओहो ही गुरु बैठे है जिसने सेवा सिमरन कीता और हुक्म मन्या। ए तुरदी दात ओदे हिस्से आई जिसनों तुरों लिखी सी।

बाबा राम राय ने देहरादून आके अपना डेरा लाया ते दून तो इस जगह का नाम देहरादून पै गया। हुण बाबा राम राय औरंगजेब दे खुशामदी बन गए ते गुरु घर दे नालो नाता इन्हां दा टुट गया। ते दूसरे पासे गुरु हर राय साहब जी ने अपना अंत समा जान करके हुण गुरुगद्दी अपने

मेरी चिंता मिट गई है पर मां ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना सारिया थावां ते तू मेरा राखा है जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा मैनू डर किसदा जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते इसे लिए मालक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी ये कौन कहेगा खसम वाला मालक वाला गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया वो मान की कर सकदा किसे ते जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा नहीं नहीं कह सकेगा उनू अपनी कमजोरी दा पता है लेकिन सतगुरु सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई राख लिए तिन रखनहार सा ब्याध मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पए उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां पर आपां पढ़ लईए जरूर सारी संगत पढ़ियो गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते फोटो ते इवें आएगी ना पता ते इवें लगेगा ना अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्हां ने माण कीता आपां वी माण करिए ने सारे तो बोलो सारे बीबिया उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आनी चाहिए क्योंकि सत्संग है सचखंड है वैकुंठ है इसकी महिमा का पारावार नहीं जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे सारे पढ़ियो

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितारदा

राग गौड़ी माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा राग दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

पता नहीं किन्ने देन, होर इस किले विच भुखिया रहना पवेगा। कृपा करो, अगर आपने किला खाली नहीं करना तो सानू आग्या दियो, असी अपने घरां नू जाए।

एक कागज लो, उस कागज ते ए लिख दियो, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नू प्यारी समझे है।

गुरु नू ए बिदावा लिख के दे आए, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। अपने घरां नू तुर पए। जदों भाई मान सिंह अपने साथियों दे नाल अपने घरां नू पहुंचे, घरवालियां ने पुछया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहबजादियां दा, गुरु के परिवार दा, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नू कहण लगे, असी ते गुरु नू किले विच छड के आ गए, किले नू घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नू छड के

सिख ने ए गल करां वालियां ने सुनी उन्हां दियां अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां। उन्होंने कहा ठीक है अज गुरु नूं छड आए अपनी जान नूं प्यारी समझ के एक दिन ते मरना है कदू तक जीवोगे पते तो के जीवना दुनिया दे डर तो सिख गवा के जीवना को जीवना है एक दिन ते मरना है जे लड़दे मर जांदे गुरु दे सामने शहीद हो जांदे गुरु तू अपनियां जाना वार देंदे ता असी शुकर करना से साडे पति तन ने जेड़े सेवा करदे मरे अज तुसी सिखी गवा के आए हो गुरु नूं छड़ के आए हो मौत तो बहुत डर लगदा दुनिया दे सुख प्यारे लगदे इस तरह करो इस साड़ियां चुनियां ले लो पग्गां ला दियो अपनियां चूड़ियां ला के अगे रख दित्तियां ए चूड़ियां पा लो तुसी घरां विच बैठो ए कमर कस्से खोल के सानू दियो कमर कस्से करके

खून ने फिर उबाला खादा के मना बड़ी भुल की थी। दुनिया दे सुख बदले गुरु नु छड़ दिता, सिखी छड़ दिती, पर जिदी कोई इज्जत नहीं

गुरु साहब का पता लगा रहे हैं। यह खबर घर घर फैल गई कि वड्डे साहबजादे चमकौर की गढ़ी शहीद हो गए, छोटे साहबजादे सरहंद दियां नीहां विच चिणे गए ने, ते गुरु साहिबां दा हाली कोई पता नहीं कि गुरु साहिब

कि दूरों कोई देखे तो पता लगे कि गुरु का दल इस पासे। खिदराने की टाप तो थोड़ी दूर एक उची टिब्बी से धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिंह समेत मोर्चा संभाल के बैठ गए।

काहे रण कहिंदे ने लड़ाई दा मैदान, लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नूं अपने पैरां थले लताड़िया। चले वीर सोऊ बड़े उत्साहे, परे शस्त्र मारे महा जंग माहे, कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले, चलाकी करन ते सोछाले उछाले। म्यान विच तेग कटी, हथां विच ढाल फड़ी, बड़ी चलाकी दे नाल छाला मार दे, वार बचांदे वार कर दे, ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए। साहब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया। कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले, चलाकी करन ते सुछाले उछाले, आखीर चटापट जुटे लटा लट होए, सटापट सुटे कटाकट जोए, कटाकुट कटे चटापट मारे, खटाखट खोटे हटा हट हारे। अखीर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखिया उसने कि ना कोई तीर चल रहे है, ना कोई गोली चल रही है, इसने फतेह का डंका बजाया, वापस मुड़ गया। हुण भाई मान सिंह मुदड़े मुंह पे है, सैंकदा पे है, सह टुटदे ने। हुण भाई मान सिंह अरदास पिया करदा।

मैनू दर्शन दे ओ बेदावा पाड़ दे जिदे ते लिखे है तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं बेदावा पाड़ दे।

रुमाल दे नाल मुंह पूंझिया, चेहरा साफ कीता, पिता शहीद कराया, गम नहीं कीता। अखां सामने पुत्र शहीद हो गए, गम नहीं कीता। परिवार विछड़ गया,

भाई मां सिंह दा प्यार देखिया ते गुरु साहिबा दीआं अखां विच अथरू आ गए। अथरू किरे भाई मां सिंह दीआं गल्लां ते जा पए, मुंह विच पाणी पाया, भाई मां सिंह ने अखां खोलियां, अखां दे विच कलगी दी लिशक पई, हाथ जुड़े ते गुरु साहिब जी बेबल होए। भाई मां सिंह नूं छाती नाल लाया ते कहंदे ने बेटा मैं आ गया, मंग की चाहिदा, अज जो मंगेगा गुरु नानक तैनू देवेगा। भाई मां सिंह हाथ जोड़े हुए ने, पातशाह टूटी गंढ लै, ओ जेड़ा कागज, ओ बेदावा जिदे ते लिखते है तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, ओ बेदावा पाड़ दे, टुटिया नू मेल लै, अपने चरणा विच जगा दे दे। गुरु साहबा ने ओ कागज हाली भी संभाल के रखिया, कागज कढ़िया, ओ बेदावा भाई मां

तेरी गोद विच जान निकल जाए होर मैनू की चाहिदा तेरे चरणा विच जगह मिले इस तू वड़ा सुख और पीड़ा हो सकता है राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे अपने चरणा विच जगह दे और कुछ नहीं चाहिदा। जदों ये गल कही साहबा ने भाई मान सिंह नूं अपने गल दे नाल लाया। भाई मान सिंह ने हुण आखरी वारी धन सतगुरु कहा मुंह बंद हो गया।

जिन्हें अमृत नहीं छकिया, गुरसिख परिवार विच जन्म लिया, सिखी विच पूरा नहीं, ना बाणी नाल जुड़िया, ना गुरु नाल जुड़िया, ना अमृत नाल जुड़िया, वो किवें पूरा हो सकता है। पूरा तो होया है भाई मास जिदा कोई जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगियां कीतियां, दुनिया नू धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोकां नू दुख दिंदा है, वो जदू मरदा है वो कदी पूरा नहीं हुंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जीउंदा है, जिन्हू रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है ते उहदे प्यारे पूरे।

आओ भाई अरदास करिए सच्चे पिता एहो जिया जज्बा एहो जिया उत्साह सानू भी दे ताके तेरे राह ते चलदे होए सच ते चलदे होए दुनिया दे भले वास्ते जीविए जो तेरा मिशन है नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला अमृत छकिए बाणी नाल जुड़िए तेरे नाल जुड़िए धर्म वास्ते

कुछ कह रही, वाणी आवाज दे रही, वाणी कुछ बोल रही, जीव सुन वाणी की कहंदी, वाणी तेनू आवाज क्यों मार रही, वाणी तेनू क्यों बुला रही, ते वाणी की आख दी, सुख माणी सुख अमृत प्रभ

संगत दे विच पिछे जा के बैठ गया खाली हाथ नमस्कार करके। आ जदों दीवान दी समाप्ति होई ना ते सतगुरां ने आखिया भी प्यारियो जेड़े भी पीटा ले आए ने सारे दे देवो सतगुरु ते जानी जानने ना। सारी संगत ने आखिया सतगुरु जिन्हें भी ले आए सन सब ने पेटा दे देती है ते सतगुरु जानी जान मालक आखन लगे चंगा वे गरीबो जे तू नहीं आउना ते मैं तेरे कोल आ जांदा। जदों सतगुरां ने इन्हीं गल आखी ना बैराग दी हद ना रही अखां दे विचों हंजो घिर आए संगत दे विच तुरे आ रहे ने ते जिथे भाई गरीबू बैठा है आके भाई गरीबू दे सिर ते हाथ रख के आखन लगे क्यों वे गुरसिखा तू कोई भेटा नहीं ले।

परम सत्कार योग सत्संग जीओ, आओ हुण आपां भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहिब वाले पास्यों शब्द कीर्तन सरवण करिए। शब्द भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन नूं डराण दी की लोड़ है। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित